कतहु सुचेत हो के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो।

सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ये पहल तू करनी है। प्यार असां देना है, लेना नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए? ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी, भावे कोई मोमन वेख रहे है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

रात्रि को गुपत जप्यो, कहूं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत, कतहूं

कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूं विचार अब विचार को विचारत हो, कहूं निज नारक पर नारके नकेत हो। कहूं बेदरीत कहूं ता स्यों बपरीत कहूं।

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे ने इस संसार ती भेजता। कलयुग विच जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया। इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट हुए और सब तो वड़ा काम ये कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैश चारा एक जगह इकट्ठिया कीता।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जिहड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवां। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा? शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलूं, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

काती अकिरत कन में कोई ना रखी, विश्वास काती अकिरत कन, विश्वास काती किसनु कहिंदे नी, जेड़ा किसे नु प्यार विच लिया के बसा के मारे, अपना बना के मारे उसनु।

तू सुचा समझ के लिया है ओ ता झूठ है किवें परमेश्वर ने 84 लाख जूना पैदा की थी।

इस तरह रम्यो होया है, जिस तरह दर्पण शीशे दे विच साडा चेहरा मौजूद है, जदों शीशा देखांगे सानू साडा मुंह नजर आवेगा। इसे तरह ही वो परमेश्वर है, जदों देखांगे

नामदेव जी कहन लगे ब्रह्म देवता नामदेव का घर बड़ा दूर जिन्ना तानू कपड़ा चाहिए मेरे को सूत्र ले लो। भगत जी ने अद्धा सूत्र उस ब्राह्मण नु दे दिता। अद्धा सूत्र लेके वो भगवान कहन लगे भाई हुण तां नामदेव दा घर दस दे। भगत जी कहन लगे हुण की लैणा। कहन लगे भाई सूट तू दे दिता है ते पग दा कपड़ा मैं नामदेव कोलों लै लां। ते नामदेव जी ने सारा ही सूत्र दे दिता ते आप बंदगी

मन गुरु चरणा दे नाल जोड़ के वाहे गुरु शब्द दा उचारण करदा है उसनु एडा वड्डा फल प्राप्त है के जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए अठ अठ तीर्था दे इशनान दा फल एथे ही बस नहीं जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश रे हो कोई चार युग कैलाश पर्वत ते बह के तप कर लवे और इस दा महात्म एथे ही बस नहीं अगलियां तुकां विच सर्व

बेर कुरुक्षेत्र में अश्वमेद जग अभंग ठयो, हुन अमृत नाम विशेष कीती जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। आख्या वाहेगुरु जपन दा इड़ा वड़ा महात्म क्यों है, ता भाई साहब अगली पौड़ी विच बयान कर दे हन, भाई वाहेगुरु शब्द दे जपन नाल चौवां जुगां दा मंत्र जपया जांदा है। चौवां जुगां तो केड़ा केड़ा अखर लैके

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यो ज्यो वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह की मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीस दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उन्हां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन, द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन, अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन, सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, ए सदाउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते सही वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब ऐसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हैं।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नू सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नू होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन।

बड़े ही गहरे जाके, बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान कीती है। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा है, किसे मित्र नू मिलना जाए ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं वधे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा लै रहे हैं, और प्रदक्षिणा लैके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया, देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हन,

उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल जोड़िया। इना दी बाणी दा शब्द है कि शब्द की है, शब्द किस तरह कोट करम करोड़ा ही माड़े कर्मा दा नाश करदा है। स्वामी रामानंद जी।

धूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती। किन्हीं कया मैं कुले वडाई, किन्हीं कया बाँब भाई। कोई कहे मैं धने पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा। किन्हीं भवन सब

संत बाबा तरसी महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई किरत दी रोटी। कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं मजदूरां वाले कपड़े पा ले एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन कहन लगा जी असी मजदूरी करना चाहते हां करो अठ घंटे काम करना पड़ेगा ठीक है करांगे मजदूरी तय हो गई जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए ठेकेदार ने बुला के आख्या ए फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा है फिर दुगनी मजूरी देन लगा कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवां। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं ऐसे बंदे तो मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा घ्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकन दा आनंद आ गया कल आपा भी चलांगे भाई। बाबा आतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे अज भी भाई काम मिलेगा ते ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहे है कि ए मजदूर नहीं हन ए कोई फरिश्ते नहीं ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखदियां वेखदियां बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरणा ते डिग पिया कहन लगा तू मजदूर नहीं है

ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राख्या, रतन न छपे छपाया। गुरु की साथ संगत, कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है, ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने, ते झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ, ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या, कहन लगे भाई असी होर किसे काम नू आए सी, हुण तां पकड़े गए, हुण इन्हां ने साडी चलण नहीं देनी, चलो भाई कीर्तन करदे आं, पर किसे गरीब किसे किरती दे बंदे दे घरों साड़ा लंगर आना चाहिदा, फिर जितने दिन मर्जी कीर्तन करवा। ते गुरु की साध संगत लिखे इतिहास विच 18 दिन बाबा जी उथे रहे, ते 18 ही दिन फिर लब लब के जेड़े किरती सिंह सन उन्हां नूं कहंदे भाई बाबा जी लई लंगर बनाना है, की ख्याल है? कहन लगे धन भाग। ते बाबा जी दा लंगर उन्हां किरतियां दे घरां विचों आंदा। भाई गुरदास साहिब जी कहंदे ने ऐ गुरु के प्यारे, किरत तां तूं कर दे पर धर्म नूं तूं गुरुद्वारे ही छड जांदे नहीं, तेरे हत्थां विच धर्म होना चाहिए, तेरे अखां विच धर्म नहीं होवेगा तूं गलत वेखेगा, ते जे आपां पैरां विच धर्म नहीं होएगा ते गलत रस्ते ते तुरनगे, ते साडी किरत विच धर्म नहीं होएगा ओ बंदा लोभी हो जाएगा, मिलावट भी करेगा, होर पता नहीं कितना अनर्थ कर देगा। इस लई भाई गुरदास साहिब जी सानू ताकीद करदे ने आओ ए तुकां पढ़िए ते समय सिर समाप्ति होए।

लेकिन उल्टा उन्हें सुख के साधना च इस तरह जकड़िया जाता है जिवें मकड़ी जाला तरदी है ते आप ही फस जाती है। गुरमुख निरंकार की रजा विच आप करे सच अलख अपार जो लख्या ना जा सकन वाला वेख्या ना जा सकन वाला वाहेगुरु है जो आप सब कुछ करदा है ओदे दर दे उत्ते ढह पैंदे ने हौ पापी तू बख्शनहार तेरा भाणा सब किछ होवे जो तू चाहना है सो होवे मेरे सिर मथे परवान। बंदा हुक्म मना के बड़ा राजी हुंदा हुक्म मनाउण दा अपना एक नशा है लेकिन हुक्म मनन विच जो मस्ती है ना हुक्म मनाउण चो गल कोई। वैसे भी तुसी देखना चार पैसे बंदा कमाउंदा है मजा रस आउंदा है स्वाद आउंदा है इहदा एक नशा है बल्कि कुछ लोग जिहड़े कमाउणा नहीं जानदे ओह खो भी लैंदे खोण दा भी एक नशा होवेगा लेकिन हथों देण दा अपनी किस्म दा नशा है ओह मस्ती ओहदा मुकाबला ओह नहीं कर सकदा। जिस बंदे कोल कुछ होवे ते ओह देंदा है ना जिस वेले हथों जो मस्ती उदों प्राप्त हुंदी है ना ओह खोण ते लैण विच नहीं खोण ते लैण दा नशा अपना है लेकिन देण दी मस्ती अपनी है इस मस्ती दा मुकाबला नहीं कीता जा सकदा। पकड़ दी अपनी गल है त्याग दी अपनी गल है त्याग विच इक बहुत वड्डी उच्ची भावना काम करदी मनुख आत्मक तौर ते महसूस करदा है कि मैं आम पद्धर तो उच्चा उठ गया और हुंदा की मनुख अपनी पद्धर तो थले डिग पवे ते जानवर है ते कई बार तुसां वेखिया जानवर भी होवे ना जे ओह अपने आम सुभा तो उच्ची गल करन लग पवे तोते शोर पाउंदे ने लेकिन एक तोता अगर राम राम जपना शुरू कर देवे ते ओह राखवा हो जांदा है। कुत्ते आवारा फिरदे ने लेकिन एक पहरेदारी ते खलो जावे ते ओह वफादार कहाउंदा है बल्कि ओहदी पूरी संभाल कीती जांदी क्योंकि अपने पद्धर तो उच्चा उठ गए। जानवर अपने पद्धर तो उच्चा उठ के महान हो जाता है ते बंदा अपने पद्धर तो थले गया आवे ए जिसने रजा विच आउंदा ते समझ लो मनुखता तो भी उच्चा उठ गया। मनुख चंगा है इंसानियत दा अपना एक पद्धर है लेकिन जिस वेले मनुख रब नाल जुड़दा है ते इंसानियत दे पद्धर तो उच्चा उठ के देवतापन तो अगे उठ के रब दा रूप हुंदा चला जांदा ओहदी इक अपनी गल है। उसे अवस्था विच मनुख जिहड़ा आम हुक्म मना के राजी है ना गुरमुख हुक्म मनन विच स्वाद लैंदा ओहदे विचों रस्ते मस्ती लैंदा। महाराज कहिंदे ने तेरा भाणा सब किछ होवै आखिर तां जो कुछ हुंदा पिया जो तैनू चंगा लगदा सोई होवै ते जिहड़े लोग मन दे पिछे लगदे ने एवें अपना आप दा नाश मारदे ने मन हट कीचै अंत विगोवै मनमुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी पृथ्वी चंद बन जांदा है ओह बंदा जेड़ा मन की मत पिछे लगता पृथ्वी चंद हो जाता जेड़ा गुरु की मत नू सिर मथे धारण कर लेंदा है वह छोटा भी गुरु अर्जन देव हो जाता। दोहां च फर्क की है उस वड्डे ते इस छोटे च संसारी पद्धर तो उमरां दे लिहाज तो वह वड्डा है छोटा है फर्क किन्ना है यह बहुत उच्चा है यह छोटा बहुत वड्डा है क्योंकि छोटा होना आ गया है रजा विच आ जाना वेखण नूं लगदा कि बंदा छोटा हो गया हुक्म मनन लग पिया मतलब छोटा हो गया नहीं बहुत वड्डा हो गया मालक दी रजा मनन वाला गुरु का हुक्म मनन वाला बहुत उच्चा उठ जाता इंसानियत दे पद्धर तो भी बहुत उच्चा उठ जाता है ते जदों बंदा लालच दे वस हो जाता है मन दी मत दे पिछे लगदा है उदों इंसानियत दे पद्धर तो थले उतर जाता है जानवरों वाले पद्धर ते चला जाता है उसने टाकरा करके वेखना पैंदा है ना दोहां चों ठीक किहड़ा है मनना पेगा रजा मनन वाला वधिया है। धन गुरु अर्जन साहब तो चंगा रजा मनन वाला धरती ते अजे पैदा नहीं होया। रजा च राजी रहण दी गल इह निरी आपां जिहड़ी शहीदी वाले दिन दी गल करने आ कि उस खिड़े मथे सारे दुखां नूं सहण दी अवस्था नूं नमस्कार करिए मत्था टेकिए ओह अपनी थां ते नहीं शुरू तो ही हुक्म मनन दी गल है शुरू तो ही रजा च रहण दी गुरु की रजा च रहण दी बाप की रजा च रहण दी ये अवस्थावां हुंदियां जिस बंदे नूं बाप की रजा मननी नहीं आई बाप का हुक्म मनना नहीं आया जिस नूं उस्ताद का हुक्म मनना नहीं आया वह फिर गुरु के हुक्म विच भी कोई नहीं आउंदा किसे वी ते जिहड़ा गुरु के हुक्म च नहीं आउंदा वह पारब्रह्म की रजा च कदों आया। अपनी अपनी अवस्था विच जिहदा जो अधिकार बनता है ओहदी रजा च

चरण कमल गुर के जपत हर जप हो नीवा, चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण पखार करम गुर सेवा बार जाओ लखबरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्नानिक प्रेस्तुरिया।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप कैसे

अंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

पर तू अपने नाल भी अपराध कर रहे। किस तरह? नाम ना जपे से आत्म काती, जो मनुख नाम नहीं जपते सिमरन नहीं करते वो अपनी आत्मा दा आत्मघात करके अपराध कर रहे हैं। किस अपराध

सास काती अकिर्त कान में कोई ना रखन विशास काती अकिर्त कान विशास काती किसनु कहंदे ने जेड़ा किसी नु प्यार विच ले आके बसा के मारे अपना बना के मारे।